0: Saq. Mihar mi suratuga ibade egota kiyawa detin tanen ibade. Mihar tanwinu fahata sukunen ibade ehn wima mikaha tantana mi kiyani nuwata mi waagwe komes kujaw tafsil kol diba.
1: ऐ देश कुम बदल कर मुगा गावा दो फुरत में गाली माया करनी में या कुरा कमियों नंबी थामवी ने वी मा देश कुम बदल वाती वे फुरत में सुकुना फील दिन मुगा गावा दो ये भी फील दी फेन ने
0: फाहतो
1: का वे साउंड ऑन नंजी है था फाहतो
0: गाली माया का फुरत में
1: फैशन जैनी वस्ली हमज़ा गुड़वा क्यों मुगा वस्ली हमजा दानु कुरे व्यती वे देश को मितांग बदल मिवानी ऐहम वीमा फ्रतमसुकुना ईबी फिल्मी देनी
0: ऐहम वीमा मिक्यों मुंदाय रुगा मिफदा तंतना देश को बदलवा तंतरां ऐ तन्वीने के फहता दे उबो फिल्म कमुगा वियस दे ईबी फिल्म कमुगा वियस दे अबा फिल्म कमुगा वियस तन्वीने के फहता हमजत लो वस्लिंग आओ मायकीगा दें सुकुनंग वेज कमुगा वाना में इफदा तंतांगा mi tanwin onna kalimaage e tanwina sukunuge baloga furatama mi jeheni ibifiyade e maane ki nuunuge ibifiyen eta ganna ni tanwina ki nuunu sukune